आवाज तजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज तजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में तजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं तजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।

0: स्वतंत्रता राज्य का प्रमाण है। पूर्व अधिकारिक और सप्रभुता राज्य की व्यवस्था और राष्ट्र की महानता है जो देश के घरेलू और विदेश नीति अर्यावस्था सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को बढ़ावा देती है।
1: याद दिलाते कि आप अभी रेडियो आवाजी ताजी को सुन रहे हैं। कार्यक्रम की इस पात में हम एक गाने के बारे में बताते हैं जो हमारे राष्ट्र के इतिहास को दर्शाता है। वो कहता है, मैं आर्यन हूँ।

गाना मैं आर्यन हूँ लोगों के प्रिय गानों में से एक है कि रेडियो और टेलीविजन द्वारा नियमित रूप से दिखाई जाती है। इस गाने को देश के लोग मरियम जलाली ईरानी कलाकार से सुनकर परिचित हुए। इस गाने की पैदाइश कैसी हुई है आइए जानते हैं।

0: Masudi Sipantka Janam San Uniso Tentalisme Khurasan ke Paschim Serbisha Zile me hua. Uska pita Sainik tha aur Sipant saab ne bhi school ke baad Police Vidyalay mein padh kar Iran Police ke vibhinn paas mein seva ki. San 1980 usne America ja ke palayan kiya. Sipant bachpan se shayari se ruchi rakhta tha. Uski shayari Iran ke samachar patr aur patrikaon mein prakashit hoti thi. अमेरिका में भी उसने अनुसंधान और अध्ययन को नहीं छोड़कर विभिन्न शायरी पेश की है। साथ ही वो अमेरिका के फारसी भाषी रेडियो और टेलीविजन में सक्रिय रूप से काम करके विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेता था। मैं आर्यन हूँ कविता को लिखने के बारे में मसूद सिपान ने एक ताजिक पत्रकार के साथ इंटरव्यू में कहा, मैंने मैं आर्यन हूँ की कविता को ताजिकिस्तान में लिखा और इस तरफशन के एक हॉल में ताजिकिस्तान की सरकार के लिए प्रस्तुत किया। मैं ताजिकिस्तान को फारसी भाषी देशों के दिल और हृदय मानता हूँ। ताजिकिस्तान का भूमि अगर छोटा हो पर उसका इतिहास और राष्ट्र बहुत बड़ा है। उसी इंटरव्यू में उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि साल के 6 महीने मैं ताजिकिस्तान में रहूं और कई विद्यालयों और रेडियो या टेलीविजन चैनल में काम कर सकूं। साथ ही आशा है कि ताजिकिस्तान के अभियंत्र मुझे मिलेगा।
1: از نسل آفتاب از شهد ماهتاب از آفتاب

जैसे हमने बताया कविता मैं आर्यन हूँ मसूदी सिपान द्वारा सन 2002 ताजिकिस्तान में लिखा हुआ। इसके बाद इस कविता को अमेरिका लेकर उसे फारसी भाषी कलाकार मरियम जलाली और उसके पति को गाने के लिए पेश किया। श्रीमती मरियम जलाली का जन्म सन 1948 को ईरान में हुआ। मरियम जलाली अध्ययन करने के लिए अमेरिका जाती है पर ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद इस देश में कैलिफोर्निया में रहती है। मरियम जलाली ने सन 1995 कला कार्य शुरू करके पहले बार एक फिल्म में जिसका निदेशक बहमान जरीनपुर था भाग लिया। उसके बाद उसने बहुत दूसरे फिल्मों में भूमिका निभाई। मरियम जलाली के व्यवसायी मुनीम था और इस क्षेत्र में उसने विभिन्न कार्यालयों और कंपनियों में काम किया है, पर उसकी आवाज़ भी अच्छी थी और उसने कई गाने गा के दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया, विशेष रूप से दरो नफस की भी मीराम दरो अरजुए तो बोशम, नाजुक दिल, बारिश और मैं आर्यन हूँ गानों द्वारा बहुत लोकप्रिय हुई है।

प्यारे सुनने वालों, ये थी जानकारी एक गाने के बारे में। हमें आशा है कि आप इस गाने में आर्यन हो की उत्पत्ति और इतिहास से परिचित हुए। आप खुजा सई मिर्जोवाली द्वारा गाए गए इस गाने को सुनकर आनंद लेते हैं।

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।

0: स्वतंत्रता राज्य का प्रमाण है, पूर्व आधिकारिक और सप्रभुता राज्य की व्यवस्था और राष्ट्र की महानता है जो देश के घरेलू और विदेश नीति अर्यावस्था सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को बढ़ावा देती है।
1: याद दिलाते कि आप अभी रेडियो आवाज़ी ताजिक को सुन रहे हैं। कार्यक्रम की इस बात में हम एक गाने के बारे में बताते हैं जो हमारे राष्ट्र के इतिहास को दर्शाता है। वो कहता है, मैं आर्यन हूँ।

सुंदरगाना में आर्यन हूँ का पैदाइश इसी तरह हुआ है। ये कहना जरूरी है कि मसूदी सिपंद की शायरी इस कविता मैं आर्यन हूँ से सीमित न होकर साथ ही उसकी कविताओं को प्रसिद्ध ईरानी गायकों सियोवुश और दोरियुश जैसे गाते हैं। इस गाने को बहुत गायकों ने गाए है। मरियम जलाली के अलावा ताजिक गायिका खुजस्ताई मिर्जोवाले द्वारा गाई गई ये गाना ताजिक लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हुआ। उस समय खुजस्ता ने अभी अभी अपना करियर शुरू की थी। इस गाने को गाने के बाद वो ताजिक लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हुई।

प्यारे सुनने वालों, ये थी जानकारी एक गाने के बारे में। हमें आशा है कि आप इस गाने में आर्यन हो की उत्पत्ति और इतिहास से परिचित हुए। आप खुजा सई मिर्जोवाली द्वारा गाए गए इस गाने को सुनकर आनंद लेते हैं।

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।